बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो,

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salin Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-341-27035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-341-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-341-27035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चिल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
2: या
3: Okay,
2: soft. Yeah, soft. Yeah. Up loud. Yeah.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपके अपने पहचान रेडियो ब्रिस्बेन 1701 हमारे स्टूडियोज में. ब्रिस्बेन टाइम ठीक 1 बज चुके हैं. हाँ, आपको पता है आज क्या है. आज है शनिवार और ये है शनिवार मस्ती म्यूजिक. आगे है दोस्तों एक और मस्ती भरा प्रोग्राम लेकर आप सभी के लिए. अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका. और हाँ, अगर आप कुछ डेडिकेशन है आपके पास और या कुछ भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर नोट करें 3279-1701. नहीं तो अगर आपके पास हमारे मोबाइल नंबर है तो आप हमें SMS कर सकते हैं. आपके साथ सू. इसके साथ साथ सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीवन, जो लोग आज अपनी जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की सालगिरह, कुछ भी खुशियां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको बहुत सारे से बधाइयां. एंड आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर.

इश्क में डूबकर हमने खुद को भुला दिया। तेरी यादों में हर दर्द ही सजा लिया, और अगर ना मिला तो लगा जैसे जहां मिल गया। इस दिल ने तो इसीलिए जीना ही छोड़ दिया।

जी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में दिल तेरा आशिक से लिया हुआ गीत पर्दे पर सलमान खान माधुरी दीक्षित के लिए। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक ब्रिस्बेन से। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी पर। यह शनिवार मस्ती म्यूजिक

फिल्म वरन सिलेवा गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना पर्दे पर्दे वनन के लिए रुक जाना उठ जाना हमसे दो बातें। और जरूर आप लोगों भी रुक जाइए क्योंकि हम अभी ही प्रोग्राम शुरू किए हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं फरमाइश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले फरमाइश है हमारे पास मैक्स प्रसाद की ओर से फ्रॉम कैलिफोर्निया USA।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग पड़े पर जितेंद्र मुमताज के लिए फिल्म का नाम हिम्मत तो आपने सुना रफी साहब और आशा जी की आवाज में है शनिवार मस्ती में से
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके अ प्लेस टू कॉल होम खोजो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार
3: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया
4: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस
3: गो फॉर द बेस्ट वीरे अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं देखे दोस्तों समय की ओर देखा जाए तो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 18 मिनट हो गए हैं 1:00 और ये है शनिवार मस्ती म्यूजिक आप सबको पता है कि क्या है क्या चल रही है जी हाँ और कौन आ गए हैं आप किसका जन्मदिन है सभी को पता है कि गणेश भगवान यानी कि गणपति बप्पा मोरिया तो चलते हैं गणेश भगवान की याद कर रहे हैं ट्यूसडे को यहाँ सनातन सेंटर वेम्बली रोड में गणेश जी का गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन भी है तो चलते हैं गणेश जी को आज हम याद कर रहे हैं बहुत प्यारा सा भजन से

जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ट्यूसडे को गणेश चतुर्थी यहाँ पर सनातन सेंटर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि गणेश जी भी आपको बहुत सारे से ब्लेसिंग दे। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। सफर कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ रेड बैंक से गंगा और गीता। आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: जी आदर, सो इस वक्त हमारे साथ सफर पर है गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक्स। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
3: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए की ओर हम बढ़ते हैं और वहां पर से हमारे पास कॉल है और फरमाइश किसने किया है हमेशा की तरह विजयन और कामनी आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत।

इस मधुर गीत को देख। अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश करने वाले थे विजय नौकामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, हम बढ़ते हैं। और अगला गीत की फरमाइश किसने किया है? जी हाँ, अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास आई है वहाँ पर मटा सिडनी से, रोबिन और उषा की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे रॉबिन और उषा, जो हमें सुन रहे हैं पैरामाटा सिडनी में।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाज

0: मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: Priya, next month mama का birthday है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
3: चलते हैं दोस्तों, ग्रीन एका सिडनी की ओर. फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एका सिडनी से रचन और मालती प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए पेशे अगला गीत. इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में पौने दो बज चुके हैं. यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक.

विस्कित को मैंने लिया था लाइटेस्ट एल्बम से और हमारे साथ शामिल हो गए यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ग्रीन एकर सिडनी में रचिन मालती प्रसाद। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी कहती है कि ठीक 1:45 बज चुके हैं। यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक। हम चलते हैं केड्रोन पार्क की ओर। शामिल हो गए हमारे साथ केड्रोन पार्क से जॉनी और सविता। आप दोनों के लिए अगला गीत

नमस्कार दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे केडरन पार्क से जोनी और सविता। आप हमारे प्रोग्राम में सुन रहे हैं कुछ लेटेस्ट गीत जो शायद आपने कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं, तो इसीलिए हम मस्ती भरा प्रोग्राम में बिल्कुल ही मस्ती भरा गीत लेकर आपके लिए आते हैं। तो यह शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बसवानी अयम। हमारे पास एक पुराने गीत की फरमाइश आई है शिकागो से अमला सिंह की ओर से, और आप सुनना चाहती हैं आशा जी की आवाज का अगला गीत।

0: आशा भोसले की आवाज का गीत की फरमाइश करने वाले थे अमला सिंह फ्रॉम शिकागो।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: तो चलते हैं एक बार और दोस्तों सैक्रामेंटो यूएसए की ओर, कामनी और विजयन जो हमारा प्रोग्राम हमेशा एंजॉय करते रहते हैं, एक बार फिर अगला गीत में शामिल हो गए हैं। चलते हैं आप दोनों के लिए जय द पारी।
4: आज की रात है क्रेजी, मेरा बोले डीजे,
5: लाइट्स ऑन, म्यूजिक लाउड, नाचे

शहर से बाहर से लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम चलते हैं बर्बट पार्क में, जहाँ में सुन रहे हैं रमेश और गीता परमार, साथ साथ में उनकी माँ है मिसेस धनगौरी सोलंकी और उनके भाई है दिनेश इंदक्षण सोलंकी फ्रॉम लेस वेगस, जो हमें बर्बट पार्क में सुन रहे हैं।

क्लास डांस में हमारे साथ शामिल हो गए थे वेलवेट पार्क से रमेश गीता परमार, साथ में मिसेस धानगवरी सोलंकी और साथ में दिनेश एंड दक्षा सोलंकी जो इस वक्त हमारे ब्रिस्बेन में हमारे मेहमान है जो वेलवेट पार्क में सुन रहे हैं, दिनेश और दक्षा सोलंकी फ्रॉम लास वेगास।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

दोस्तों हम चलते हैं स्काबरा रेड क्लिफ की ओर। इस गणेश भजन में हमारे साथ शामिल हो गए हैं रेड क्लिफ से ब्रिजर शैली कुमार।

बात तरह से गए दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर आपने सुना, और जैसे मैंने कहा है, अगर आपको पता नहीं है तो गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन वेम्बली रोड सेंटर में ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, हम बढ़ते हैं मेनली वेस्ट की ओर, हम चलते हैं लक्ष्मी हमें वहाँ सुन रही है, तो लक्ष्मी चलते हैं आपको शामिल करते हैं किसमें, डांडिया पर।

कनाडा में हमारे साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी फ्रॉम मैनली वेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोस में 22 मिनट हो गए हैं 2:00 और यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक। अगर आपने अभी हमारा साथ दिया है, ट्यून इन किया है, तो स्वागत है आप सभी का रेडियो विश्वानी पर। आपके साथ सो

चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम सैक्रामेंटो यूएसए की ओर और हमारे साथ एक बार फिर शामिल हो गए हैं सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन और कामनी। आप सुनना चाहते हैं अगला गीत।

और बहुत प्यारा गीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग विजयन और कामिनी की पसंद पर आपने सुना जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। और जो गीत था खास करके विजयन की फरमाइश पर आपने सुना, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी। और मुझे पता है एवरीबॉडी लव्स क्या वर्ड ऑन दैट, सुनते हैं।

0: अच्छा दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी और 20 मिनट रह गए हैं 3 बजने में। और मुझे पता है कि कैबॉय म्यूजिक जो है बहुत मजा आती है सभी को, एवरीबॉडी लव्स कैबॉय म्यूजिक। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। अगले शनिवार मस्ती म्यूजिक में जरूर कुछ ना कुछ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स।

0: To celebrity partner Shaurya Entertainment, Nikhar Juneja, A Journey Within, Ek Shaam, Bhajan, Bhakti aur Spirituality ke naam.
1: O Siya Ram ki gali mein tum jana, wahan naachte milenge Hanumana.
0: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swiddhi's Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 1701 है। शनिवार मस्ती म्यूजिक और मस्ती भरा प्रोग्राम पर आपका हमारा साथ है ठीक 3 बजे तक।

चलते हैं दोस्तों, आखिरी गीत पर हम आ पहुंचे हैं और आखिरी गीत की फरमाइश किसने किया है? जी हाँ, आखिरी गीत की फरमाइश हमारे पास है मेलबर्न से एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: और हाँ दोस्तों, इस आखिरी गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मेलबर्न से एल्फ्रेड और किरण प्रसाद। इसके साथ साथ बस दो ही मिनट रह गए हैं 3 बजने में ब्रिस्बेन टाइम। साथ हमारा आज का आपका हमारा साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, देखें व्हाट एवर यू डूइंग, एंजॉय योर वीकेंड आउट देयर। और हमारी मुलाकात है टुमारो संडे, जो हमारा यहाँ पर संडे है, और यूएसए आपका तो होगा सैटरडे ना, तो एंजॉय, सभी लोग एंजॉय करें अपना वीकेंड पर। और चलते चलते ये कहते हैं नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: बनाया सुकू सुकू।
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू। आई

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक From 5 PM onwards. For tickets, contact 04227

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
2: या
3: ओके सॉफ्ट
2: अप लाउड या
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नमस्ते आदाब खैर मकदम, और उन सबको तो बड़ा वाला हाय जिनका आज है वीकेंड। जी हाँ, वीकेंड स्टार्ट हो चुके हैं और आई नो कि बहुत सारे लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं, शांति की सांस ले रहे हैं। आज कोई ऑफिस वर्क नहीं करना है, आज कोई ऑफिस के लिए भाग दौड़ नहीं करनी है, आज सिर्फ और सिर्फ वो थकान उतारनी है जो पूरे हफ्ते आपको परेशान करती रही है और जिसकी वजह से आपको पूरे हफ्ते ये लगता रहा यार थोड़ा सा रस तो जिंदगी मुझसे भी मांगती है, काश मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सा सुकून आ जाता। तो सेलिब्रेट कीजिए आज अपने आलस को, अपने सुकून को, अपनी जिंदगी को और अपनी थकान को। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने वीकेंड वाली वाइब के साथ सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और आगे लेकर चलती हूँ आपको इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

सो वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। और सच सच बताइए, बिल्कुल सच, कितने लोग अभी अभी बेड से उठे हैं और आलसी की तरह फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। यू नो सैटरडे की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अलार्म बजने पर हम उसे बंद नहीं करते, ना ही उसे और थोड़ी देर बाद का अलार्म सेट नहीं करते, बस डायरेक्ट उसे कैंसिल कर देते हैं। अगर आप भी अभी तक अपने आलस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वेलकम टू द क्लब। पीते हैं गरम चाय और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ, एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: आज ना कोई ऑफिस का मेल देखना है और ना ही बॉस का कॉल उठाना है, आज सिर्फ चिल करना है। तो चलिए आपके इस चिल में थोड़ी सी मिर्च हम भी ऐड करते हैं और एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। सुधाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट, आपकी अपनी रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर।

सैटरडे आया नहीं कि दिमाग में डाइट साइट पर हो जाती है और क्रेविंग की घंटी बजने लगती है। भाई आज तो छोले भटूरे बनते हैं, पूरे हफ्ते इतनी मेहनत की है, क्या वीकेंड पर ठीक से खाएं भी ना। और जो लोग बाहर है, भारत से बाहर है और उन्हें इंडिया के फूड बड़े पसंद है या इंडिया के फूड की क्रेविंग होती है, वो ढूंढने लग जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स, जहां पर उन्हें उनकी पसंद के छोले भटूरे, डोसा और सबसे इम्पोर्टेंट यार दाल चावल मिल सके। देखा जाए तो जिंदगी की यही तो छोटी छोटी सी खुशियां हैं। आज कैलोरी काउंट मत कीजिए, जी भर के और पेट भर के खाइए, अपने दिल के सुनिए और सताशी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: सैटरडे जुलाई आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ, और इस सैटरडे आपके साथ हो रही हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त बातें। या ये बातें जो हैं ये रोज के काम की नहीं है, आपके करियर गोल के मोटिवेशन की नहीं है, आपको आगे पुश करने की नहीं है। भाई आज तो हम कह रहे हैं दो कदम पीछे खिंच जाइए और थोड़ा सा आराम करिए, और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके साथ सताक्षी है।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रिजे प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो सैटरडे को या वीकेंड्स पर मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग आधे दिन तक तो नाइट सूट में ही रहते हैं, वो कपड़े जो उन्होंने पहने थे वो उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा इससे एक मजेदार बात याद आई है, बताओ आपको। एक रिसर्च कहती है कि दुनिया के 70% लोग सैटरडे और संडे यानी अपने वीकेंड्स में वही कपड़े पहनते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रखते हैं। इनफैक्ट वो कपड़े भी जिनकी स्ट्रिच कहीं से खुल रही हो या जो हल्के से फटे भी हो या पुराने हो गए हो वो उन्हें भी पहनना पसंद करते हैं, ये रिसर्च कहती है। बिकॉज वो उस कपड़े में फिट है, वो उस कपड़े को लेकर कंफर्टेबल है, उन्हें मजा आ रहा है उसको पहनकर। अच्छा मेरे साथ भी यही होता है, मतलब जिस कपड़े को मैं पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, फिर वो मेरा फेवरेट बन जाता है घर के लिए। बाहर में तो मतलब दिखावा करना है, घर में मुझे मेरा क्या पुराने हो गए हो वो उन्हें भी पहनना पसंद करते हैं, ये रिसर्च कहती है। बिकॉज वो उस कपड़े में फिट है, वो उस कपड़े को लेकर कंफर्टेबल है, उन्हें मजा आ रहा है उसको पहनकर। अच्छा मेरे साथ भी यही होता है, मतलब जिस कपड़े को मैं पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, फिर वो मेरा फेवरेट बन जाता है घर के लिए। बाहर में तो मतलब दिखावा करना है, घर में मुझे मेरा कंफर्ट चाहिए, है ना, वो कंफर्ट वाले

अच्छा, सैटरडे आते ही ना दो तरह की पर्सनालिटीज एक्टिव हो जाती हैं, पहली एक्सट्रोवर्ट और दूसरी इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो शाम को पार्टी का प्लान बनाते हैं, उसके लिए ड्रेस प्लान कर रहे हैं, ड्रेस प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी साइड होते हैं इंट्रोवर्ट्स, जो दुआ करते हैं कि शाम का प्लान कैंसिल हो जाए ताकि वो घर बैठ कर शांति से अपना पिज्जा एंजॉय कर सके। आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, घर बैठकर चुपचाप से होम डिलीवर पिज्जा खाने वाली या फिर पार्टी करने वाली? शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं एंजॉय करती हूँ अभी आपके साथ मिलकर ये अगला ट्रैक। भाई मेरा भी तो सैटरडे है, आइए सुनते हैं इसे और सुनते रहिए हमारे साथ सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: इसी शो को, अपने इसी वीकेंड शो को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? जब आप रात में सोते हैं ना, तो यार ये ख्याल रहता है कि कल संडे है, आज भी छुट्टी और कल भी उठने का कोई टेंशन नहीं है ना। तो सैटरडे और संडे के मिक्स कॉम्बिनेशन को आइए सेलिब्रेट किया जाए सनली ट्रैक के साथ। अभी हमारे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, आपके अपने रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर।

यूं तो सैटरडे को हम बहुत सारे काम करते हैं, सारे पेंडिंग काम खत्म करते हैं भाई आजकल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बच्चों का होमवर्क चेक करना, उनके स्कूल में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, वो सब देखने के लिए भी आपको सैटरडे संडे ही मिलता है। घर जितना फैला रहता है रोज भाग दौड़ में, उसे समेटने के लिए भी सैटरडे संडे ही मिलता है। एंड आपके गेस्ट का वेलकम करने के लिए भी आपको सैटरडे संडे ही मिलता है। तो मैं ये कह रही थी कि खुद के लिए भी तो सैटरडे और संडे निकालना है ना, जो इन कामों से, इन गेस्ट के वेलकम से, इस साफ सफाई से, इन जिम्मेदारियों से हटकर हो। वरना मंडे को आपको ये फील आएगा कि यार इतनी जल्दी मंडे आ गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं अपने लिए। तो जरूर ये सारे काम आपको करने होंगे, लेकिन कुछ वक्त आपको अपने लिए निकालना है जो रोज के रूटीन से हटकर हो, अलग हो, ताकि फील आए आज हमने अपने वीकेंड पर ये अपने लिए किया। ठीक है जी, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ आपको लेकर। एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Begin वाले शो को सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर. You know, जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे जी लेने चाहिए, वरना हाथ से फिसल जाते हैं. आज नहीं जिएंगे तो मंडे आ जाएगा, इसलिए मेरी मानिए तो जीते चलिए और सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी. सताक्षी आपके साथ है.

मैं क्या सोच रही थी ना, जब आप ये गाना सुन रहे थे कि हम तो वो लोग हैं, मतलब आपको भी इंक्लूड कर ही लिया मैंने कि यार आप भी सोचते ही होंगे कभी कि यार किसी के साथ तो बुरा किया नहीं है ना, तो हम तो वो लोग हैं जो बिना बुरा किए, बिना किसी के साथ बुरा किए बुरे बने बैठे हैं। हाँ मतलब लोगों को यही लगता है कि ये तो मतलब एकदम क्या बोलूं, निरूपा रॉय, हाँ पुरानी फिल्मों में निरूपा रॉय जी करती थी ना, या बिंदु, ऐसे वाले कैरेक्टर यार लोग दे देते हैं हमें। लड़के से तो खुश ना हो आपको भी अमरीशपुरी समझा जाता है। तो मतलब आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते, उसके बाद भी आप विलेन बन जाते हैं, बिना मतलब बन जाते हैं, और आप सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग के लिए बस यही कहूंगी कि यार एक्सप्लेन करना बंद कीजिए, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं वो हो रही हैं, और आप चाहें या ना चाहें लोग आपके बारे में वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। तो बने रहिए बुरे, ठीक है भैया, हम बिंदु ही सही, हम अमरीश पुरी ही सही है ना, हम अपने में खुश हैं। बस जो सोच रहा है हमारे बारे में सोचता रहे, कम से कम सोच तो रहा है। अब अच्छा ही सोचेगा तो बेचारा कुछ सोचेगा नहीं, बुरा सोचने वाले ही तो सोचते हैं। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे लाइट रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: You know, weekends की मुझे सबसे खास बात क्या लगती है? Weekends की सबसे खास बात मेरे लिए होती है आपका मेरे साथ mentally, emotionally और physically present रहना। You know, रोज तो मुझे लगता है कि मैं आपसे बात करती हूँ, morning में बात करती हूँ, फिर हम रजनीगंधा में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि यार एक वक्त तो बंदा भाग दौड़ में लगा है कि उसे जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन तब भी जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं और लोग कहते हैं कि आप कितनी सारी बातें आप मेरे साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये बात मुझे ऐसे अच्छी लगी, या कई बातों पर मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, साक्षी ये नहीं, ये ऐसे होता है, तो मुझे ये लगता है कि यार कितने ध्यान से लिसनर सुन रहे हैं मुझे, है ना। तो एक एंकर को या एक आर्टिस्ट को और क्या ही चाहिए कि उसे सुनने वाला उसे ध्यान से सुन रहा है, या देखने वाला उसे ध्यान से देख रहा है, उसकी बात को समझ रहा है। तो यार वो तो एक फीलिंग है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये लगता है कि यार रोज तो आप भाग दौड़ में आपसे क्या ही बातें की जाएं, लेकिन सैटरडे संडे मुझे लगता है कि यार आज तो सुकून से हम और आप बात कर सकते हैं ना। वैसे जैसे कि अपॉइंटमेंट लेकर बात नहीं करनी आज आपसे कि भाई जल्दी जल्दी 5 मिनट का अपॉइंटमेंट है, आज तो भाई साहब फुर्सत में, तो इन्हीं फुर्सत के लम्हों के नाम ही अगला ट्रैक सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

वेल दोस्तों, ये था सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी का आपके साथ एक और प्यारा सा साथ। आई होप कि इस साथ को आपने एंजॉय किया और आपको अच्छा लगा, मजा आया। तो बस कुछ हसीन लम्हों के साथ, कुछ बातों के साथ, अपने वीकेंड्स के जज्बातों के साथ कल फिर मिलती हूँ आपसे आपके वीकेंड वाले शो, संडे वाले शो फरमाइशी गीतों में। अपनी फरमाइशों को पहुंचाते रहिए, मुझ तक भेजते रहिए और बताते रहिए कौन से हैं आपकी पसंद के गाने। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक बार फिर से। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय करते रहिए और जिंदगी जीते रहिए। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा,
1: वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
5: कह दूं तुम्हें
6: हाँ
5: या चुप रहूं
6: ना,
5: दिल में मेरे आज क्या है?
6: क्या है?

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
4: हिल मत चिल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
4: या
3: या Okay, soft.
4: Yeah, soft.
3: Yeah.
4: Up loud.
3: Yeah.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं

0: और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
3: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चिल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा ओके
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो गए. ले भाई चाबी.
12: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट.
11: ओके, तुम आ रही हो?
12: मैं जाऊं.
11: लगता रूम में रह गए.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302800009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

न बदला में, न बदला।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रीज सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चिल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
1: या
2: ओके सॉन्ग
1: या लाउड या
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेस फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

भक्त जनों, रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आपके संडे को भक्ति से भरने के लिए मैं सताक्षी एक बार फिर से आपके साथ हूँ। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर हर रोज की भागदौड़ आपको ईश्वर से दूर करती जाती है, लेकिन रविवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जब आप फुर्सत में होते हैं। तो चलिए आज भागदौड़ के जल्दी नहीं रखते हैं, ईश्वर को प्रणाम भी करते हैं, नमन भी करते हैं और मंत्रोच्चारण भी करते हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर हमारे भक्ति सागर के साथ, जहां आज भौतिकता के इस कोलाहल से दूर अपने भीतर के उस असीम शांति की यात्रा करते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने सनातन कहा है। वैसे सनातन धर्म या संप्रदाय की संकुचित कोई सीमा नहीं है। सनातन वो है जो सत्य है, जो सूर्य के उगने में है, जो सांसों की डोर में है और जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, वही सनातन है। और उसी सनातन धर्म को प्रणाम करते हुए, उस परम पिता को प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं आगे। रेडियो प्रसवानी पर मेरे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ बहुत ही पावन है कि संसार का हर जीव सुखी हो, सब रोग मुक्त रहे, सबका कल्याण हो और किसी भी प्राणी को कभी दुख का सामना ना करना पड़े। भक्तजनों, जब हम संपूर्ण संसार की, पूरे जगत के कल्याण की कामना करते हैं, तभी तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो चलिए इस शुद्ध हृदय के साथ ईश्वर को नमन करते हैं और बढ़ते हैं आगे। रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आपके साथ सताक्षी है।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ। भक्ति का ये अनमोल सफर हमारे और आपके साथ आगे भी जारी रहेगा। रेडियो ब्रिस्वानी पर मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए भक्ति सागर।

श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणि वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत सब कर्मणि, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल की आशा से कर्म करते हैं तो असफलता का भय आपको तोड़ देता है। वैसे कर्म भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए लेकिन अभी प्रभु को प्रणाम करते हैं इस अगले गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी और सुनते रहिए भक्ति सागर।

शास्त्रों में कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होता है जो हमारे बीते हुए जन्मों और समय का हिसाब किताब रखता है। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो संचित कर्मों का हिस्सा है और हमें इस जीवन में फल देने के रूप में मिलता है। क्रियमाण कर्म वो होता है जो कर्म हम आज इस पल अपनी इच्छा से कर रहे हैं। याद रखिए, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का क्रियमाण कर्म आपके आने वाले कल की दिशा तय करता है। इसलिए कर्म को बोझ नहीं, ईश्वर की पूजा समझकर करिए।

अत्सो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतगमय। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये, जिसका अर्थ है हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अपने भीतर के उस अजन्मे अविनाशी परमात्मा को प्रणाम करिए और याद रखिए कि आपकी शांति आपके भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजिए।

तो ये था आज भक्ति सागर पर हमारा आपके साथ एक और साथ। जब हम सब मिलकर परमात्मा को पुकारेंगे तभी तो आवाज उन तक पहुंचेगी ना, इसलिए भक्ति सागर के साथ हर रविवार जुड़ते रहिए। अब आज मैं तो इस कार्यक्रम के साथ आपसे विदा ले रही हूँ, लेकिन भक्ति और प्रभु की आराधना खत्म करने के लिए नहीं होती। आज जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी देर ही सही हर रोज चलती रहनी चाहिए। आज के सफर से अब मुझे विदा दीजिए। प्रभु आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर आपको सदगति प्रदान करें, आपको सही मार्ग पर चलाएं, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि।

0: हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: यह है रेडियो 79 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं। मैं आपके साथ देता हूं हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत, और फिर 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा खास इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें आप सुन सकते हैं 7 से कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वालियां, और फिर उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वाली के साथ, उसके बाद मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हमद, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से। उससे पहले आप सुनते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन, और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

जुल्म पर जुल्म हो रहा है। आम लोगों की नजर फलस्तीन से हट तो गई है, मीडिया ने आपकी नजर हटा दी है दीगर लड़ाइयों की तरफ, दीगर मुसीबतों की तरफ, दीगर हालात की तरफ, लेकिन अभी तक वहां फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है। अल जजीरा को मैं पढ़ रहा था गुज़िश्ता कल, जो न्यूज है, इंसान को मुख्तलिफ न्यूज को पढ़ना चाहिए, कभी बीबीसी को, कभी अल जजीरा को, कभी बाकी जितने भी हैं मुख्तलिफ को, तो उसके अंदर बतला रहे थे कि वहां इतने लोगों को कत्ल कर दिया, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद यह है कि अभी तक दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर बड़े जारहाना तौर पर जुल्म हो रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रूएल्टी हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड द वन थिंग वी शुड रिमेंबर इज दैट इफ वी कैन नॉट फिजिकली हेल्प समबडी देन द लीस्ट यू कैन डू इज मेक दुआ फॉर देम। आप जब किसी की जाती तौर पर जुल्म से उनको बचा नहीं सकते, इफ यू कांट असिस्ट समबडी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जुल्म एंड क्रूएल्टी, देन द लीस्ट यू कैन डू इज मेक दुआ फॉर देम, द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप इज दैट यू स्प्रेड द न्यूज अबाउट देयर क्रूएल्टी सो दैट दिस न्यूज मे रीच समबडी हु may be able to help in the situation. Aajkal social media hai, deegar bhi cheeze hain, aur uske zariye aap apni khabar ko hazaron logon tak pahuncha sakte hain, aur wo jo hazaron log jo hain wo deegar hazaron tak pahuncha sakte hain, aur koi pata nahi ki kiski baat का असर हो और किसके प्रेशर का असर हो और उसकी वजह से वो जुल्म खत्म हो जाए। यू नेवर नो दैट दिस सोशल मीडिया और योर मैसेज मे ट्रेवल अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड इट मे रीच सर्टन इन्फ्लुएंशियल पीपल हु मे नॉट हैव बीन बॉदर्ड अबाउट इट और मे बी इट द न्यूज मे नॉट हैव रीच्ड देम और दे डिड नॉट नो द सेवेरिटी ऑफ द क्रूएल्टी एंड द जुल्म and now that this message has reached them or it reached them but it wasn't reaching them enough, they thought it was a one off or a second time off, but now that it's reaching them again and again, it may reach those influential people who do have a say and whose voice does have power and strength and influence and can stop that zulm. To isliye never underestimate the power of your message going to other people. Aapka dusron tak jo message ja raha hai usko kabhi halka na samjho, koi pata nahi ki kis tak aapki baat pahunch jaye aur uske kehne, uske hilne, uske baat karne se, uske taluqat ki wajah se wo zulm khatam ho sakta hai. To ek to मेरा मैसेज ये है, वन ऑफ माय मैसेजेस इज दुआ तो करते ही रहें, लेकिन दूसरी बात, जहां कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो एशिया के अंदर हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, जिस कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर हो, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर हो, व्हिच एवर कॉन्टिनेंट, व्हिच एवर कंट्री, इफ देयर इज क्रूएल्टी, देयर जुल्म, इनजस्टिस गोइंग ऑन, नाइंसाफी हो रही है, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, दुआ करते रहें कि या अल्लाह उनसे जुल्म को दूर फरमा, जुल्म से नजात नसीब फरमा और जुल्म से उनकी हिफाजत फरमा। और दूसरा काम, कम से कम अपने सोशल मीडिया के ऊपर या अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उस बात को आगे पहुंचाते रहो। Sometimes it just means sending a link from that article or from the news or forwarding the video or the message. मुख्तसर बाज़ औक़ात होता है, और आजकल सोशल मीडिया के अंदर चंद सेकंडों के अंदर विद अ फ्यू क्लिक्स
You can send it to many, many groups.

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। इसी शनिवार 19 सितंबर को सारे विश्व में श्री राधाष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। इसी कारण आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी। सर्वप्रथम राधा का जो रहस्यमय तत्व है, यानी राधा के विषय में जो सच्चाई है, जो विज्ञान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी है कौन? आम लोग राधा रानी के विषय में नहीं जानते। राधा तत्व वास्तव में बड़ा ही गोपनीय है। ये वो विषय है जिसे वेद में भी छुपाया गया है, और इसके फलस्वरूप कई मानसिक कल्पनाएं हैं या कोई वास्तविक कल्पना है भी नहीं राधा के विषय में। हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकवादियों के लिए ये राधा कृष्ण की दिव्य जोड़ी एक उलझन या पहेली के समान है, एक पजल है। राधा और कृष्ण के रहस्य को समझने के लिए बहुत ही गहरी आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। राधा रानी ना तो कोई सामान्य स्त्री, ना ही कोई विशेष स्त्री इस भौतिक जगत की है जिसके साथ कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। वो स्वयं भगवान की आनंददायी शक्ति है जो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहती है। चैतन्य चरितामृत में यह प्रमाण मिलता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी अन्योन्य विलसे रास आस्वादन करी। अर्थात राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं भगवान की आंतरिक आनंद प्रदान करने वाली शक्ति लादिनी शक्ति का दिव्य प्रदर्शन है। यद्यपि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अनंत काल के लिए दो अलग अलग दिव्य रूप धारण कर लिए। राधा और कृष्ण एक ही है, परंतु उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार वे प्रेम के रसों का आस्वादन करते हुए एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण प्रबल कारक है और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए, दोनों एक है। हम एक और दूसरे में भेद नहीं करते, जिस प्रकार हम आग और गर्मी में भेद नहीं करते। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है और वो नित्य काल से कृष्ण के आनंद को तीव्र बनाती है। जो अव्यक्तवादी होते हैं वे बिना एक महाभागवत भक्त के इस तत्व को नहीं समझ सकते। राधा नाम ही ये दर्शाता है कि श्रीमती राधा रानी शाश्वत रूप से श्री कृष्ण के सुखों की सर्वोच्च स्वामिनी है। अतः वे श्री कृष्ण को जीव जंतुओं की सेवा पहुंचाने का माध्यम है। इसी कारण वृंदावन में भक्तजन श्री कृष्ण के प्रेमी सेवकों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा की कामना करते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम का एक प्रदर्शित रूप है। श्री राधा लादिनी शक्ति है, यानी कृष्ण की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। कृष्ण शक्तिमान है और राधा ऊर्जा या शक्ति है। राधा और कृष्ण इस मायने में एक ही आत्मा है कि वे शक्ति और शक्तिमान है। भले ही वे एक आत्मा है, फिर भी अनंत काल से वे श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में मधुर लीलाओं का आनंद लेने के लिए दो अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण के पास असीमित शक्तियां हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आंतरिक शक्ति या अंतरंग शक्ति, बाहरी शक्ति या बाहिरंग शक्ति, और तटस्थ शक्ति या तटस्था शक्ति। तटस्थ शक्ति जीव शक्ति है। बाहरी ऊर्जा वो ऊर्जा है
जिसके द्वारा इस भौतिक संसार का सृजन पालन तथा विनाश होता है, और आंतरिक शक्ति उनकी वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने आध्यात्मिक संसार को बनाए रखे हैं। यह आंतरिक शक्ति या अंतरंग शक्ति, जिसे स्वरूपा शक्ति या चित शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, उसके तीन पहलू है। संधिनी शक्ति उनके नित्य अस्तित्व का पहलू है। भगवान की ये अस्तित्वगत शक्ति, जिसके द्वारा वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, संधिनी शक्ति का सार भाग शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर आधारित है। कृष्ण की माता, पिता, धाम, घर, शैया, आसन आदि सभी शुद्ध सत्व के ही स्वरूपांतर है। तो ये अंतरंग शक्ति का एक पहलू है जिसे संधिनी शक्ति कहते हैं, और दूसरा पहलू है संवित शक्ति। संवित शक्ति भगवान की चेतना या ज्ञानात्मक शक्ति का वो स्वरूप है जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वो शक्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को भी अपना ज्ञान कराते हैं। संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये था अंतरंग शक्ति का दूसरा पहलू, संवित शक्ति। अब अंतरंग शक्ति का तीसरा पहलू ह्लादिनी शक्ति है। ह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और भक्त पोषित होते हैं। इस शक्ति के द्वारा वे दिव्य आनंद से युक्त रहते हैं और अपने भक्तों को आनंद का अनुभव कराते हैं। अब हम विशेष रूप से लादिनी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। अर्थात लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का सर्वोच्च विकास महाभाव है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। अर्थात श्री राधा ठाकुरानी महाभाव का साक्षात स्वरूप है। वे सभी दिव्य गुणों की खान है और भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रिय पत्नियों, गोपियों, सहचारियों में शिरोमणि या सर्वश्रेष्ठ रत्न है। कृष्ण प्रेम भावित यान रचितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राह क्रीड़ाड़ सहाय। उनके मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण के प्रेम में संलग्न है। वो स्वयं कृष्ण की शक्ति है और वो उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। किसी को भी उन्हें भौतिक नहीं समझना चाहिए। वो निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों की तरह नहीं है जिनके पास भौतिक इंद्रियों से ढके हुए स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीर होते हैं। वो पूर्णतः आध्यात्मिक है और उनका शरीर तथा मन दोनों एक ही आध्यात्मिक स्वरूप के हैं। क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, इसलिए उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। इस प्रकार उनका शरीर, मन और इंद्रियां पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में चमकती है। वो साक्षात लादिनी शक्ति यानी भगवान की अंतरंग शक्ति की आनंद देने वाली ऊर्जा है, और इसी कारण वो श्री कृष्ण के लिए आनंद का एकमात्र स्रोत है। श्री कृष्ण ऐसी किसी भी वस्तु का आनंद नहीं ले सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। इसलिए राधा और श्री कृष्ण अभिन्न या एक ही है। श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के संधिनी अंश ने श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक रूप को प्रकट किया है, और उसी अंतरंग शक्ति ने ह्लादिनी विशेषता के माध्यम से श्रीमती राधारानी को प्रस्तुत किया है, जो कि सर्व आकर्षक के भी आकर्षण है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधारानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता।
कृष्णकांत गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजांगना रूप आर कांत गण सार, श्री राधिका हैते कांत गणेर विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सहचरियां तीन प्रकार की है, भाग्य की देवियां यानी लक्ष्मियां, फिर रानियां और फिर ब्रज की गोपियां जो उन सब में सबसे श्रेष्ठ है। ये सभी सहचरियां श्री राधिका जी से ही प्रकट होती है। अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, अम्शनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार सभी अवतारों के मूल स्रोत भगवान कृष्ण है, उसी प्रकार श्री राधा इन सभी स्वरूपिनियों शक्तियों का मूल कारण है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। अर्थात राधा ही गोविंद को आनंद देने वाली है और वे ही गोविंद को मोहित करने वाली मोहिनी भी है। वे गोविंद का सर्वस्व जीवन का आधार है और उनकी समस्त संगिनियों में शिरोमणि है। यहां तक कि बृहद गौतमीय तंत्र में भी कहा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वो भाग्य की सभी देवियों या लक्ष्मी जी के सभी रूपों की केंद्रीय आकृति है। उनके भीतर पूर्ण आकर्षक भगवान को भी आकर्षित करने का संपूर्ण आकर्षण समाहित है। वो भगवान की आदि अंतरंग शक्ति या यिलादिनी शक्ति है। जगत मोहन कृष्ण ताहारा मोहिनी, अतएव समस्तेरा पर ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण पूरे संसार को मोहित करते हैं, परंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। प्रकट शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रास आस्वादिते धरे द्वि रूप। तो इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण एक ही स्वरूप है, फिर भी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए हैं। राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हिलादिनी नाम जाहार। अर्थात श्रीमती राधिका प्रेम का रूपांतरण है। वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है जिसे हिलादिनी कहते हैं। हिलादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। वो लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। आमतौर पर लोग श्रीमती राधारानी और श्री कृष्ण के बीच के शुद्ध प्रेम पूर्वक संबंध को नहीं समझते हैं। कृष्ण के साथ राधारानी के प्रेम संबंध कोई साधारण सांसारिक प्रेम संबंध नहीं है। मनुष्यों को कृष्ण के प्रति राधारानी के प्रेम के शुद्ध रूप को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में यदि दो लोगों के बीच आकर्षण होता है तो वे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन वास्तव में यह प्यार शब्द या प्रेम शब्द इस संदर्भ में उपयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये केवल कृष्ण और जीवों के बीच के विशुद्ध प्रेम पूर्ण संबंध के लिए है। प्रेम का अर्थ है कि वहां कोई स्वार्थ नहीं है। व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करता है, क्योंकि भौतिक प्रेम या प्यार हमेशा इंद्रियां तृप्ति पर आधारित होता है, इसलिए यह वास्तव में काम वासना या वासना है, प्रेम या प्यार नहीं है। जब कुछ लोग शास्त्रों में राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम पूर्ण संबंध के बारे में पढ़ते हैं
तो वे तुरंत भौतिक प्रेम के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु राधा रानी और कृष्ण के बीच का प्रेम संबंध शुद्ध प्रेम है, क्योंकि राधा रानी केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनसे प्रेम करती है। वास्तव में राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति है, जिनका कार्य कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। अनादि काल से वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रही है। अर्थात हमारे लिए प्रेम और काम वासना के बीच के अंतर को जानना आवश्यक है, ताकि हम राधा रानी के प्रेम में भाव को समझ सके। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु नहे काम। गोपियों के प्रेम को रूढ़ भाव कहा जाता है, ये पवित्र और निष्कलंक है, ये किसी भी समय वासना नहीं होता है। कृष्ण के साथ अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार में गोपियों की स्थिति दिव्य या अलौकिक है, उनके इस भाव को रूढ़ भाव कहा जाता है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक काम वासना जैसा प्रतीत होता है, फिर भी किसी को इसे सांसारिक लैंगिक प्रेम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के प्रति विशुद्ध और अभिक्षित प्रेम है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौहा आर हेम ये छे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम के लक्षण अलग अलग है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे और सोने की प्रकृति अलग होती है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम या लालसा है, परंतु भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। एक व्यक्ति को कामुक या शारीरिक प्रेम और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे अलग अलग श्रेणियों के हैं और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। वे एक दूसरे से उतने ही अलग है जितना लोहा सोने से अलग होता है। प्रामाणिक शास्त्र पवित्र प्रेम को इस प्रकार समझाते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो हो स प्रेमा परिकीर्तितः। यदि एक वैवाहिक संबंध के विच्छेद या टूटने का पर्याप्त कारण हो और फिर भी ऐसा विच्छेद नहीं होता है, तो प्रेम के ऐसे प्रगाढ़ संबंध को शुद्ध कहा जाता है। अधीनस्थ गोपियां श्री कृष्ण के साथ ऐसे शुद्ध प्रेम के बंधन में बंधी थी। उनके लिए इंद्रियां तृप्ति पर आधारित कामुक प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं था। अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह किए बिना श्री कृष्ण को हर तरह से सुखी देखना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। उन्होंने अपनी आत्माओं को केवल परमेश्वर श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए समर्पित कर दिया था। गोपियों और कृष्ण के बीच कामुक प्रेम का लेश मात्र भी अंश नहीं था। श्री चैतन्य चरितामृता के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे अधिकार या दावे के साथ कहते हैं कि यौन प्रेम अर्थात शारीरिक संबंध व्यक्तिगत इंद्रियां तृप्ति का विषय है। वेदों में लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से संबंधित सभी नियामक सिद्धांत इंद्रियां तृप्ति के ही विभिन्न चरण है। कई बार इंद्रियां तृप्ति के कार्यों को दूसरी वस्तुओं के आड़ में किए जाते हैं, तो किन किन चीजों के आड़ में ये इंद्रियां तृप्ति की जाती है, ये जानकर संभवतः आपको आश्चर्य होगा। इंद्रियां तृप्ति या भोग के कार्य जन कल्याण, राष्ट्रवाद, धर्म, परोपकार, नैतिक संहिताओं, बाइबल की संहिताओं, स्वास्थ्य निर्देशों, सकाम कर्मों, संकोच या लज्जा, सहनशीलता, व्यक्तिगत आराम, भौतिक बंधनों से मुक्ति, प्रगति, पारिवारिक स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी सजा के डर की आड़ में किए जा सकते हैं, परंतु ये सभी श्रेणियां एक ही मूल तत्व इंद्रियां तृप्ति के अलग अलग उपविभाजन है। ऐसे सभी अच्छे कार्य मूल रूप से
अपनी ही इंद्रियां तृप्ति या स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इन अत्यधिक प्रचारित नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत हित या स्वार्थ को त्याग नहीं करते, परंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य चिन्मय अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल एक शाश्वत सेवक मानता है। इस दासत्व भाव में किए गए सभी कार्य ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की पूर्ण इंद्रियां तृप्ति या प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। हालांकि किसी कार्य के फल या परिणाम को भोगने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य इंद्रियां तृप्ति का ही कार्य है। ऐसे कार्य कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म रूपों में दिखाई देते हैं। तो काम वासना का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रियों का भोग करना है, परंतु प्रेम भगवान के सुख भोग को संतुष्ट करता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली है। सामाजिक रीति रिवाज, शास्त्रीय निर्देश, शारीरिक मांगे, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, आत्मतृप्ति और वर्णाश्रम धर्म का मार्ग जिसे त्याग करना अत्यंत कठिन है, गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने परिवारों के साथ इन सभी का परित्याग कर दिया और अपने रिश्तेदारों की सजा तथा डांट फटकार को सहन किया। वे केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता या सुख के लिए उनकी प्रेममय सेवा करती है, अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। इसे भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ आसक्ति कहते हैं। ये एक निष्कलंक स्वच्छ वस्त्र की भांति पूर्णतः शुद्ध है, जिस पर कोई दाग नहीं होता। इसलिए काम वासना और प्रेम बिल्कुल भिन्न है। काम घने अंधकार के समान है, परंतु प्रेम चमकते हुए सूर्य के समान है। तो इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम वासना का लेश मात्र भी अंश नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता या सुख के लिए है, उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए नहीं। उनका ये भाव श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटविम् अतसि तद् व्यथते न किं स्वित् कुरपाब्धिभिर् भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। श्रीमद् भागवतम या भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 31वें अध्याय 19वां श्लोक है, गोपी गीत अध्याय का, और इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे परम प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर भी बहुत धीरे से डरते डरते रखते हैं, ताकि आपके चरणों को चोट ना लगे। हमारा जीवन केवल आप में ही बसता है, इसलिए जब आप वन के मार्ग पर विहार करते हैं तो हमारे मन इस चिंता से भर जाते हैं कि कहीं आपके सुकुमार चरणों में कंकड़ पत्थर न चुभ जाए। तो गोपियां अपने सुख या दुख की परवाह नहीं करती। उनकी सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए समर्पित होती है। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को प्रसन्नता देने के प्रति उनकी पूर्ण रूप से शुद्ध आसक्ति है। कृष्ण का विचार गोपियों के प्रति क्या है, वो कृष्ण स्वयं कहते हैं। एवं मदोर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम ही वो मई अनुवृत्त ये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूयितुम मारहथ तत्प्रियम प्रियः। कि हे मेरी प्रिय गोपियों, तुमने मेरे लिए सामाजिक रीति रिवाजों, शास्त्रिक नियमों और अपने सगे संबंधियों तक का परित्याग कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने से केवल इसलिए ओझल हुआ था ताकि मेरे प्रति तुम्हारा ध्यान अर्थात एकाग्रता और अधिक बढ़ सके। क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए ही ओझल हुआ था, इसलिए तुम्हें मुझसे असंतुष्ट या अप्रसन्न नहीं होना चाहिए।
अब इसके बावजूद हम देखते हैं कि गोपियां अपने शरीरों का ध्यान रख रही है और स्वयं को बहुत सुंदर ढंग से सजा रही है। कोई ये कैसे समझ सकता है कि वे अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रही है। इस संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अब गोपियां अपने शरीर के प्रति जो कुछ भी स्नेह दिखाती है उसे निश्चित रूप से केवल भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही समझो। गोपियां सोचती है, मैंने ये शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी है और इससे उन्हें आनंद मिलता है। वे इस शरीर को देखने और स्पर्श करने में आनंद पाते हैं। तो गोपियों की ये सोच है, इसी कारण से वे अपने शरीरों को स्वच्छ और सुसज्जित करती है। आदि पुराण में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, मेरे प्रति गहरे प्रेम के गोपियों से बढ़कर कोई और पात्र नहीं है जो अपने शरीरों को केवल इसलिए स्वच्छ और सुसज्जित करती है क्योंकि वे अपने शरीरों को मेरा मानती है। इसी संदर्भ में हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गोपियों द्वारा प्रदर्शित भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए हमें गोपियों द्वारा अपने व्यक्तिगत श्रृंगार में दिखाई गई सावधानी को गलत नहीं समझना चाहिए। गोपियों ने स्वयं को जितना संभव हो सके उतना सुंदर ढंग से सजाया, केवल इसलिए ताकि उन्हें देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। उनकी कोई अन्य गुप्त इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने शरीरों और अपनी हर संपत्ति को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया था, ये मानकर कि उनके शरीर केवल कृष्ण के ही सुख के लिए है। उन्होंने स्वयं को इस समझ के साथ सजाया कि उन्हें देखने और स्पर्श करने से श्री कृष्ण सुखी होंगे। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गोपियों के भाव की एक और अद्भुत विशेषता है, इसकी शक्ति बुद्धि की समझ से परे है। जब गोपियां भगवान कृष्ण को देखती है तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही उनके भीतर ऐसे सुख की कोई इच्छा नहीं होती। गोपियां उस सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख का आस्वादन करती है जो भगवान कृष्ण को उन्हें देखकर प्राप्त होता है। गोपियों की अपने स्वयं के सुख में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। ये वास्तव में एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इस विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन का उन्हें केवल एक ही समाधान दिखाई देता है। गोपियों का आनंद उनके प्रिय के आनंद में ही निहित है। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनका आनंद बढ़ जाता है और साथ ही उनकी अद्वितीय मधुरता भी बढ़ जाती है। गोपियां सोचने लगती है, श्री कृष्ण ने मुझे देखकर इतना सुख प्राप्त किया है, तो ये विचार गोपियों के मुखमंडल और शरीर की पूर्णता तथा सुंदरता को और बढ़ा देता है। गोपियों के सौंदर्य को देखकर भगवान कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है और गोपियां जितना अधिक भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखती है उनका सौंदर्य भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। इस प्रकार उन दोनों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। हालांकि श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य और उत्तम गुणों से सुख प्राप्त करते हैं और जब गोपियां उनके इस सुख को देखती है तो गोपियों का आनंद और बढ़ जाता है। इसलिए हम ये पाते हैं कि गोपियों का आनंद भगवान कृष्ण के आनंद को पोषित करता है। इसी कारण उनके प्रेम में काम वासना का दोष विद्यमान नहीं है। गोपियों की स्थिति अत्यंत उलझन भरी विस्मयकारी है, क्योंकि यद्यपि वे व्यक्तिगत सुख नहीं चाहती है फिर भी वो सुख उन पर थोप दिया गया था।
इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण के सुख की अनुभूति गोपियों के सुख से बंधी हुई है, इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियों अर्थात राधारानी और उनकी सखियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गोपियों की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गोपियों की संस्तुति पर कृष्ण तुरंत एक भक्त की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य कृष्ण के बजाय गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे, परंतु उनके समकालीन लोगों ने उन्हें गलत समझा और इसी कारण से भगवान चैतन्य ने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। सुंदर गोपियों को देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं और इससे गोपियां भी प्रफुल्लित हो उठती है, जिससे उनके नवयौवन से युक्त मुखमंडल और शरीर खिल उठते हैं। गोपियों और श्री कृष्ण के बीच बढ़ती सुंदरता की ये असीम प्रतियोगिता इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी सांसारिक नैतिकतावादी इन लीलाओं को शुद्ध रूप से कामुक समझने की भूल कर बैठते हैं, परंतु ये लीलाएं बिल्कुल भी सांसारिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करने की गोपियों की तीव्र इच्छा इस पूरे दृश्य को भगवान के शुद्ध प्रेम से सराबोर कर देती है, जिसमें यौन भोग या वासना का एक भी दाग नहीं होता। गोपियों के प्रेम का एक और स्वाभाविक लक्षण है जो ये दर्शाता है कि इन गोपियों में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य सौंदर्य को पोषित करता है, बदले में वो माधुर्य उनके प्रेम को और बढ़ा देता है, जिससे उन्हें परम संतोष मिलता है। प्रेम करने वाले को आश्रय कहते हैं और जिससे प्रेम किया जा रहा है उसे विषय कहते हैं, तो आश्रय का सुख उसके विषय के सुख में ही निहित होता है। तो ये वासना या व्यक्तिगत संतुष्टि का संबंध नहीं है। जब भी निस्वार्थ प्रेम होता है उसकी यही शैली या रीति होती है। प्रेम का भंडार प्रेमी तब आनंद प्राप्त करता है जब उसका प्रिय पात्र प्रसन्न होता है। जब प्रेम का यह सुख श्री कृष्ण की सेवा में बाधा डालता है तो भक्त ऐसे आनंद या भावों के प्रति भी क्रोधित हो उठता है। इसका उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है कि श्री दारुक को अपने प्रेम के दिव्य आनंद या भावों से कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि उनके कारण उनके अंग स्तब्ध या जड़ हो गए, और इस प्रकार भगवान कृष्ण को पंखा झलने की उनकी सेवा में बाधा आ रही थी। उसी भक्ति रसामृत सिंधु से एक और उदाहरण कि कमल नयनी श्री राधारानी ने उस दिव्य प्रेम या भाव की तीव्र निंदा की जिसके कारण अश्रुधारा बहने लगी थी और गोविंद के दर्शन करने में उनकी दृष्टि में बाधा आ रही थी। इसके अतिरिक्त शुद्ध भक्त कभी भी पांच प्रकार की मुक्तियों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा का परित्याग नहीं करते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, कृष्ण का एक शुद्ध भक्त जो उनसे अनन्य प्रेम करता है, भगवान के विग्रह में विलीन होने से लेकर अन्य प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से मना कर देगा। वो केवल अनन्य सेवा से ही संतुष्ट रहता है, उसे मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होती है। शुद्ध भक्ति में तो मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होती। गोपियों का स्वाभाविक प्रेम काम वासना के लेश मात्र अंश से भी रहित है। यह निष्कलंक देदीप्यमान चमकदार और पिघले हुए सोने की भांति शुद्ध है। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, सखियां, पत्नियां, प्रिय शिष्याएं, अंतरंग सहेलियां और दासियां हैं। गोपियां श्री कृष्ण की इच्छाओं को जानती है और वे उनके सुख भोग के लिए पूर्ण प्रेममयी सेवा करना जानती है। वे अपने प्रियतम की संतुष्टि के लिए अत्यंत कुशलता से अपनी सेवा संपन्न करती है। सही गोपी गण मध्ये उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्ये
प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, उत्तम गुणों, सौभाग्य और इन सब से बढ़कर प्रेम में सभी से श्रेष्ठ है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि पृथ्वी पर वृंदावन धाम है और वहां गोपियां विशेष रूप से महिमामयी है, क्योंकि उनमें मेरी श्रीमती राधा रानी विराजमान है। तो राधाष्टमी उत्सव के उपलक्ष में हम आपकी सेवा में राधा तत्व पर चर्चा कर रहे थे। यदि हमारे किसी भी श्रोतागणों को आज के विषय पर कुछ प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो आप उसे ईमेल के द्वारा हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedavanibrisbane@gmail.com। इस्कॉन ब्रिस्बन के द्वारा राधाष्टमी का उत्सव इसी शनिवार 19 सितंबर को मनाया जाएगा शाम को 4:30 बजे से इस्कॉन ब्रिस्बन 8 Lee Road डेरा पर। सभी को सादर आमंत्रण है। और अब आप सभी की सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत रेडियो विजवानी पर। मैं जतीश पुरन आपका साथ हो गया हूँ। एक घंटा का प्रोग्राम है दोस्तों। सुबह सुबह आपने बहुत से कार्यक्रम सुने, बहुत से रिलीजियस कार्यक्रम सुने हैं, और अभी आपने सुना वेदवाणी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चले सबसे पहले देखते हैं कि हमारा वेदा क्या है। वेदा, जी हाँ, वेदा के लिए कहा गया है कि आज मौसम कुछ बादल छाए रहेंगे, 13 and 24 रहेगा दोस्तों। कल के लिए कहा गया है पार्टली क्लाउडी, 13 and 25, लेकिन बारिश नहीं है। और ट्यूसडे के लिए सनी रहेगा, 13 and 27, नो रेन। वेंसडे के लिए कहा गया है पार्टली क्लाउडी, 14 and 25, शायद 1 millimeter रेन हो। थर्सडे को पार्टली क्लाउडी, 12 and 22, नो रेन। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी है, 12 and 23, बारिश नहीं है दोस्तों। सैटरडे को मोस्टली सनी है, 12 and 27, बारिश नहीं है। चलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जितने लोग रेडियो से सुन रहे हैं या शायद आप इंटरनेट से भी सुन रहे हैं, चलो फिर भी आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। तो चले, एक ही घंटा है, बहुत शायद एक हम छोटा सा भेद वार्ता लेकर आएंगे दोस्तों 9:30 बजे, तो कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा। चलिए किशोर कुमार और आशा भोसले से सुनेंगे फिल्म याद आ रहा है। जी हाँ, उसका गाना है, आई थिंक दैट्स द राइट मूवी।

और दोस्तों 9:30 बजे हम एक भेंटवार्ता लेकर आएंगे और आप सुनते रहिए। इसमें कुछ सनातन वर्ल्ड कप जो होने को है न्यूजीलैंड में, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे दोस्तों, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। और आगे बढ़ते हुए एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर फिजी का न्यूज़ है दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डाइज इन ब्रिस्बन। फिजी ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कन्फर्म्ड ऑन सैटरडे इवनिंग दैट एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर अग्नि देव सिंह हैड डाइड इन ब्रिस्बन। नो कॉज ऑफ फेदर अरेंजमेंट्स वेयर इंक्लूडेड इन द इनिशियल अनाउंसमेंट। FBC की ओर से आया है दोस्तों। तो ये रहा लेटेस्ट आपके लिए। चिल्ड्रन कंसल्टेड ऑन सोशल मीडिया प्रपोजल। फिजी गवर्नमेंट is consulting young people aged 13 and 17 while considering social media restrictions for children aged 16 and under. Their views will help shape proposed legislation before it goes to cabinet and parliament, so no ban has yet been enacted. Australia mein Optus outage affected emergency calls. Optus apologizes on 12 September after 76-minute voice network failure. Failure the previous day affected customers in Victoria, South Australia, Tasmania and the Northern Territory. About 40 Victorian callers required welfare checks, but police reported no adverse outcomes. Regulators are investigating. So, ye hua hai. Aur kya? A new care facility, POS Haven, has opened at Mangania in Nandi for children affected by neglect, abuse or abandonment, including children living with disabilities. It currently supports 12 children and plans eventually to establish emergency and transitional care. So, ye raha kuch mila jula khabar khabre dosto. Radio Biswani aap sun rahe hain, aapki apni pehchan. Aur आगे बढ़ते हुए चलिए, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा इंटरव्यू है आज और आप ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। और अगला जो गीत है, ये गीत मैंने लिया है प्रेम रतन धन पायो से। जी हाँ, जलते दिए।

उम्मीद है दोस्तों आज का सिलेक्शन आपको पसंद आ रहा होगा और आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत सा प्यारा गीत है। गीत तो सभी प्यारे होते हैं दोस्तों, है कि नहीं। और फिर जैसे मैंने कहा शायद कुछ ही देर में हम एक इंटरव्यू लेकर आएंगे। चलिए पुराना सा गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। क्या बात, चलिए सुनते इस गीत को। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह से आप सुनेंगे।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: और गली गली शोर है दोस्तों कि कुछ होने जा रहा है और कुछ लोग हमारे साथ में हैं। और सबसे पहले चलो जितेन प्रसाद हमारे साथ में है। जितेन भाई, आपका स्वागत है रेडियो बिजवानी पर, और आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए हमारा जो पैनल है आज और हम इस इंटरव्यू को क्यों कर रहे हैं।
1: जतीश भाई नमस्कार, और रेडियो बिजवानी 1701 को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह के बेला में हम भाई अपने प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट क्विंसलैंड सनातन नितेश सिंह और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट और करंट सेक्रेटरी प्रवीणेश प्रसाद के संग हो चुके हैं। और विषय क्या है? वर्ल्ड कप, 11th वर्ल्ड कप, सनातन वर्ल्ड कप जो ऑकलैंड में होने जा रहा है। एंड सो दैट वी जस्ट सोचा कि आपके साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर ले, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पास कर दें।
0: अच्छा, जो वर्ल्ड कप है इसमें कहां कहां से टीम आ रहे हैं?
1: न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। बट इस विषय पर प्रवीणेश भाई बेटे जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर है, जो वर्ल्ड कप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सो आई लाइक हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द पार्टिसिपेटिंग टीम्स एंड क्या हो रहा है इन ऑकलैंड।
0: ओके प्रवीणेश भाई, आपका राम राम।
2: जतीश भाई राम राम।
0: सीताराम कैसे आप?
2: बहुत अच्छा है। और जब भी वर्ल्ड कप आते हैं तो आप हमें मौका देते हैं रेडियो में आने के लिए, और पिछली बार भी आपने दिया था
0: मुझे,
2: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जी
0: मुझे बहुत याद नहीं है, बट हम क्यों नहीं, आप तो आप सब हम साथ में हैं, क्यों नहीं करेंगे हमेशा, एनी टाइम। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं।
2: नहीं प्रॉब्लम। ये हमारा वर्ल्ड कप, ये 11th सनातन वर्ल्ड कप है, और 9th हम यहाँ क्वींसलैंड में होस्ट किए थे और 10th सिडनी में हुआ था, रिसेंट ये है। 11th ये भी ऑकलैंड में होने जा रहा है, और हम 6 बोर्ड गवर्नर से वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करते हैं। और वर्ल्ड कप इस बार ऑकलैंड में बिल मैकेनली पार्क और 2 और ग्राउंड्स पे होगी, और टीम तकरीबन 50 प्लस टीम्स है, गोल्फ है, नेटबॉल है, और ये ज्यादा टीम आती है ऑस्ट्रेलिया और फिजी और न्यूजीलैंड से, और कनाडा अमेरिका से एक या दो टीम आती है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड कप होता है, और ज्यादा टीम को मौका देते हैं जो होस्ट करते हैं, और कंट्रीज जिस स्टेट से जाते हैं। क्वींसलैंड से मेरे ख्याल से 3 कैटेगरी में है, ओपन 40s एंड 50s, फिर सिडनी और मेलबर्न भी 7 टीम में जाते हैं।
1: बेटे मैंने थोड़ा होमवर्क किया इस पर। जतीश भाई 76 सोका टीम्स रहेगा, 30 प्रीमियर, 18 ओवर 40s, ओवर 45, ओवर 50, और पहली बार ओवर 55 हो रहा है। 16 नेटबॉल टीम्स है, 15 वॉलीबॉल टीम्स है, और पहली बार 80 गोल्फर्स भी भाग ले रहे हैं। तो इट्स अ रियल रियली बिग टूर्नामेंट दैट इज बीन होस्टेड बाय द वर्ल्ड कप सनातन बॉडी।
0: अच्छा गोल्फर्स भी है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन एंटर। अच्छा बताइए, ये सब करने में खर्च बहुत ज्यादा होता है, सो हाउ हु फंड्स, हाउ डू यू डू द फंड, व्हाट डू यू डू, कैसे आप लोग फंड रेजिंग करते हो? आई सपोज दिस इज सेम एवरीवेयर, ऑल द कंट्रीज दे वुड हैव टू हैव सम।
1: जी हाँ, पर्टिकुलरली स्मॉल कम्युनिटी लाइक ब्रिस्बेन, जहां पर कम्युनिटी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन QFFI सोका कर रहा है, सनातन सोका कर रहा है, एंड देन अदर रिलीजियस बॉडीज कर रहे हैं। बट इस विषय पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने प्रधान को, इंटरिम प्रेसिडेंट नितेश को, एंड ही हैज बीन ड्राइविंग द क्वींसलैंड सनातन टीम वेरी वेल, एंड आई थिंक वी विल आस्क हिम द क्वेश्चन ऑफ हाउ द टीम इज बीइंग प्रिपेयर्ड एंड फंडिंग कहाँ से आता है। नितेश बेटे
0: स्वागत है, नितेश भाई आपको स्वागत है।
3: थैंक यू जतीश भाई। एज फार एज फंडिंग, हमारा फंडिंग जो आता है, हम हमारे कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत अच्छा सहयोग देते हैं हमको, देयर फ्यू स्पॉन्सर्स, जो इसका हम नाम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दे वेरी प्राउड कम्युनिटी मेंबर्स जो हमारे टीम के साथ में खड़े हुए हैं डे वन से। तो हमारे मेजर स्पॉन्सर्स है अल्ट्राच्यून ओलोंगे बॉयली, Alliance Logistics, NRS Transport, NRS Rentals, Vintech Auto, Elevate Forklifts, Subway Brands Plans, Magic Events, Repair Street Garage, Rubs Electrical, Hungry Indian, Ria Jewelers and IMDT Electrical. So ये कुछ स्पॉन्सर्स हैं हमारे जो हमें सहयोग दे रहे हैं, और कुछ कम्युनिटी के लोग भी हैं जो हमारे लिए फूड रन्स करते हैं, और अलग अलग सोर्सेस भी हैं उनके जिससे हमें को मदद दे रहे फंड्स रेज करने के।
1: थैंक यू नितेश भाई, आप सॉरी जतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जो स्पॉन्सर्स के नाम लिए। साथ साथ में मुझको बताया गया कि मार्टिन राम फ्रॉम राम्स के आप और सनी भाई फ्रॉम टोटल फोकस ग्रुप, वो भी हम लोग को मोनेटरी सम से हेल्प कर रहे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और सो व्हेन आर यू गोइंग टू डू द फूड रन, और कब होगा, कब करने का आप सोच रहे हैं? कुछ फूड रन करेंगे?
3: फूड रन हमारा नेक्स्ट फूड रन इज प्लान है 27th ऑफ सितंबर, जो आने वाला अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद जो है 27th सितंबर को, उसमें हम फूड रन कर रहे हैं। फूड पैक है एक्चुअली, $60 पैक।
0: ओके,
3: तो जो जो लोग अगर आप चाहिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रवीणेश भाई को या मुझको डायरेक्टली, तो इससे हमारी टीम को जो है बहुत अच्छी मदद मिलेगी।
1: उससे पहले नितेश भाई, जतीश भाई, उससे पहले नेक्स्ट सैटरडे को अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज अ प्रेजेंटेशन नाइट टुगेदर विद काची।
0: Okay.
1: काची जो बोलते हैं, यू बाय कार्ड्स एंड वी ड्रॉ कार्ड्स फॉर टू विन प्राइजेस, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू सेल $50 कार्ड, अ कार्ड फॉर $50, एंड साथ साथ में प्रेजेंटेशन नाइट रहेगा, चेजा होगा थोड़ा। वी वांट टू थैंक एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द प्लेयर्स एंड द टीम, द कोच जो मोस बेटे है, और साथ साथ में कोच दीपक। सो नितेश, आप कुछ बताएंगे टीम के विषय में और काची नाइट के लिए?
0: हाँ, फिर से बताइए डेट वगैरह फिर से।
3: तो 19 सितंबर, प्लीज रिमेम्बर 19 सितंबर हमारे काची नाइट है। जो काची नाइट है बेसिकली काची कार्ड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, जिसमें आप 15 प्राइजेस जीत सकते हैं, पर वो एक एक अलग इवेंट है टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन नाइट एज वेल। सो ऑन द डे हम प्रेजेंटेशन नाइट भी कर रहे हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके सामने, और अभी तक टीम कैसे प्रिपेरेशन कर रही है उसका भी हम इंफॉर्मेशन देंगे उसी दिन, और सबको इन्वाइट भी कर रहे हैं कि डिनर इवेंट नाइट है, जैसा नाइट है, तो वहाँ पे ड्रिंक्स भी हम ऑन सेल रखेंगे, और एंट्री फ्री होगा, जो भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। डिनर और जैसा नाइट है
0: जी।
3: इन टर्म्स ऑफ टीम, टीम इज डूइंग वेरी वेल। टीम हमारा बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन में चल रहा है, बहुत ही गुड क्वालिटी प्लेयर्स भी है हमारे साथ हैं। आई थिंक
0: ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग पूरा फुल ऑन ट्रेनिंग हो रहा है इस समय।
3: फुल ऑन ट्रेनिंग हो रहा है, आज शाम को 6 बजे हमारा प्रैक्टिस मैच भी है।
0: अच्छा। अगर
3: लोग आना चाहते हैं, जनरल पब्लिक
0: कहाँ पर होगा?
3: वो भी मोस्ट वेलकम।
0: कहाँ पर होगा
3: ये? कुपस प्लेन्स में है।
0: अच्छा, ओके ओके।
3: बहुत दूर ये क्यूईटी हॉस्पिटल, अगर QE2 हॉस्पिटल आपको पता है, बस उसके बिल्कुल ही पीछे एक सोकर ग्राउंड है, वहीं पे हम आज मैच की प्रिपरेशन चलेगी।
0: अच्छा।
3: तो ये जो लोग अगर आसपास में रहते हैं और टीम से मिलना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम, कम एंड मीट एंड ग्रीट द प्लेस।
0: ओके, तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारे लिसनर्स भी जान गए हैं कि क्या क्या हो रहा है, और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा हम और जानकारी देते रहेंगे दोस्तों, और जो फूड रन होने वाला है उस पर भी हम आपको बतलाएंगे, ताकि आप भी, मुझे तो ये मालूम नहीं आप लोग कैसे करते हो, बिकॉज जितना भोजन देते हो मुझे तो लगता है शायद कोस्ट टू कोस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे, मुझे पता चला था।
1: बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, और अभी भी वी रिक्वेस्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड, आकर सहयोग दीजिए। जस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो ये टीम जा रहा है ना टीम प्रेपरेशन के लिए, जस्ट लाइक आज सांझ को जब 6 o'clock गेम होगा, ट्रेनिंग होगा, तो फ्रंटलाइट को पे करते हैं, ग्राउंड हाया के पे करते हैं, देन वी गोट अ टीम ऑफ 20 प्लस गोइंग एफएआर, उलों का अकोमोडेशन, 5 डेज का अकोमोडेशन, 5x3 मील्स, 15 मील्स, प्री मैच मील्स, एंड देन मेडिक्स, यू नो, प्लेयर वेलफेयर, सो ये सब मिलाकर काफी ज्यादा खर्च हो जाता है ना, तो इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कम्युनिटी का बात है, हम लोग का सनातन के बात है, और गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू आवर यूथ, एज यू ऑल नो, मेरा फ्यूचर, मेरा सब टाइम एक बात है कि आवर फ्यूचर इज आवर यूथ, और बहुत मेहनत से, यू नो, आई लाइक टू एक्नोलेज माय कमिटी, और नितेश का जो कमिटी है ना, वी गॉट अबाउट 10 पीपल देयर हु इज रियली वर्किंग आउट ऑफ, यू नो, अ लॉट टू गेट दिस डन, यू नो, सो बहुत ही खर्च है, लेकिन आई स्टिल रिक्वेस्ट ब्रिस्बेन, प्लीज कम फॉरवर्ड, कम एंड हेल्प अस एज मच एज यू कैन, पिक अप द फोन, कॉल अस एंड सी हाउ यू कैन हेल्प अस।
0: ये बात मुझे अच्छा, गो अहेड।
3: हाँ, जतीश भाई, एक बार और सभी ब्रिस्बेन जितने हमारे कम्युनिटी है उनको एक बार बताना चाहता हूँ, क्वींसलैंड सनातन हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल टीम इन वर्ल्ड कप, एक ही स्टेट है जो बैक टू बैक सनातन वर्ल्ड कप जीता है 2014 और 2016 में, सो क्वींसलैंड इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू कम एंड सपोर्ट द सनातन टीम जो जा रही है, वन ऑफ द फेवरेट टीम है, so let's get behind the team and
0: the pressure is on,
3: support the team.
0: the pressure is on
3: yes.
0: aur dekhiye mujhe
2: Jitesh bhai, main bolna chahta hu,
0: go ahead
2: Jitesh bhai, progress hai, main dhanyawad dena chahta hu Queensland Lambasa ko jo ye food drive hai bhai Ibran ke dwara hamare liye wo kar rahe hai, to wo jitna bhi revenue aayega हमें वो लंबा सा टीम और कम्युनिटी मिलके क्वींसलैंड सनातन के साथ वो हमें दान में देंगे।
0: अच्छा,
2: तो इमरान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जतीश भाई, शुक्रिया जतीश भाई। आपने सुना नाम इमरान को ना, शेख इमरान लंबा सा टीम।
0: जी, जी जी जी।
1: तो चलो, ये सिर्फ सनातन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, बिकॉज जब कम्युनिटी से एक टीम जाता है तो ब्रिस्बेन कम्युनिटी सब साथ हो जाते है ना, तो इट डजंट मैटर क्या रिलीजन है, प्लेटफॉर्म तो सनातन ही है, लेकिन सब मिलकर करते हैं, सो दिस इज सो ब्यूटीफुल इन ब्रिस्बेन दैट वी आर एबल टू एम्ब्रेस एवरीवन टुगेदर इन दिस जर्नी, नो, दैट इज वेरी very very nice for Sheikh Imran and the community.
0: Well, that is what sport is all about. Sport is not about discriminating, it's about, you know, to be inclusive. Aur ye to bahut achhi baat, aur ek baat mujhe bahut achhi lagi ki youth log abhi aajkal aap dekhenge jo vatavaran abhi hai, agar youth ko computer mil jaye to fir khel khatam, aur it is very important to get the youth out there, you know, away from all these things. तो चलो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, और अंत में कुछ और कहना चाहेंगे आप?
1: I'll give it to Nitesh, our president, to sum it up. बेटे Nitesh.
3: Thank you, Jatish bhai, आपने जो हमारा सहयोग दिया है आज रेडियो पिलाने के लिए, और to the whole Brisbane, please come forward, come support Queensland, let's make Queensland proud. Our thanks to all Queensland Sanatan current committee members for helping wherever you can, your family members, everyone, thank you very much.
0: Parvinesh, you want to say something?
1: Thank you.
2: भाई, थैंक यू आपको, और जो आप अभी से नहीं, हमें हमेशा से सपोर्ट करते हैं 1701, और फिर भी जैसे नितेश भाई ने स्पॉन्सर्स ने कहा, हमारा मेजर स्पॉन्सर भाई राजू अल्ट्रा चुमका हमेशा हमारा साथ देते हैं, तो हमारे मेजर स्पॉन्सर्स को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और साथ साथ में जस्ट टू फिनिश इट ऑफ, सिर्फ जतीश भाई नहीं लेकिन अंजी भाभी को मैं याद कर रहा हूँ, शी इज द वन हु रिमाइंडेड अस एट 9 o'clock दैट जतीश को रिमाइंड कर देना कि ये इंटरव्यू, थैंक यू अंजी भाभी, यू ऑलवेज देयर फॉर अस, एंड वी लाइक टू से, यू नो, सब मिलके, हाथ ही हाथ में मिलके, और लेट्स मेक इट अ सक्सेसफुल टूर टू गो एंड कम बैक।
0: जी भाभी, आप लोग सब समझ गए हैं, उसके बिना कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। चलो, चलिए, बहुत अच्छा लगा, एंड कीप द गुड वर्क, आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ योर टाइम, लॉट ऑफ योर फैमिली टाइम टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स, ये कोई जोक नहीं है दोस्तों, जब ये लोग इतना कसरत से काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज होता है कि इनको हम पहुंचाएं, मदद करें. आफ्टर ऑल दे रिप्रेजेंटिंग अस, इजंट इट? सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन. और मैं ना ही नहीं बोल सकता हूं, जब आप लोग आ जाते तो मैं कैसे ना ही बोलूं. ना ही बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब हम सब मिलजुल कर साथ में काम करते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है. आपको एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए.
1: थैंक यू. जय सियाराम.
0: जय सियाराम.
3: थैंक यू.
0: अच्छा, तो चलिए दोस्तों, भेंट वार्ता आपने सुना और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे जितना भी हो सकता है. दोस्तों जाइए, वहाँ पर गेम भी देखिए, और अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर चिया भी कर सकते हैं आप. इफ़ सो हैपन्स यू आर देयर एट दैट टाइम, गो फॉर इट. तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. आपने सुना और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे जितना भी हो सकता है. दोस्तों जाइए, वहाँ पर गेम भी देखिए, और अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर चिया भी कर सकते हैं आप. इफ़ सो हैपन्स यू आर देयर एट दैट टाइम, गो फॉर इट. तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट।
1: और दोस्तों, अब हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि अब अगला जो कार्यक्रम है,
0: माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय
2: ये है रेडियो 17 ऑन ब्रिस्बेन, और आप सुन रहे हैं संगीत की जानकार, जिसको हम शुरू करते हैं रविवार की सुबह, हर रविवार की सुबह 10 से, और आप सुनते हैं संगीत की जानकार स्टेशन पर 10 से लेकर 12 बजे तक। जी हां, 11 बजे से हम आपका मूड बदलते हैं। फुट टैपिंग म्यूजिक, उन मेलोडी वो सुप्रीम 50s, 60s, 70s से निकली हुई गीतमाला, एक लम्हा साथ तुम्हारे, साज और आवाज़।

हाँ 10 से लेकर 12 बजे तक संगीत की झनकार, और संगीत की झनकार के बाद आप सुनते हैं बोले जिले संगीत रोहित सिंह के साथ और फिर सुशीला के साथ। बहुत खूब रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर हर रविवार को

हम खास तौर पर स्वागत करते हैं उन श्रोताओं को जो अक्सर हमारा प्रोग्राम हर रविवार की सुबह 9 से लेकर के 10 बजे तक रेडियो 4 EB पर 80s में सुना करते थे।

बीते 5 मिनट के लिए आपका मूड बदलने के लिए आप सुन रहे थे ये बहुत ही पॉपुलर फैमिली मूवी है। मूड आपका तैयार है ना हमारी प्रोग्राम सुनने के लिए? आप सब सुनने वालों को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।